0: Stay connected with Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धाधीना कत धाधीना धान धीना धीना कत तेरे के धाधीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रकदे तेरे के धा धा धिना कत धा धा धिना त्रिकड़धा त्रिकड़धी त्रिकड़धा धा धा धिना त्रिकड़धा त्रिकड़धी त्रिकड़धा धाटी धा के धिना के ना घिना ना धाटी धा के धिना

0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.